मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

विकलांग टांगलो लाके आकाशवाणी दीपू आडुंठु नीली लामथे अजयमे अंगडेंगलोंग रोहिला रोंफार पी पेन लामजर के थान आरजू एक सिनेम

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 1500 लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग भी शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोसेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधारित चांदी के हॉलमार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। मानक ब्यूरो त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से अधिक चांदी के कारोबारियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल सितंबर से ये व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की जा चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। श्रावण में आयोजित होने वाली 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु पुंछ जिले में स्थित बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर जाते हैं। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कलराज स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट्रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इले तुमको अनमा कि पे ठेक दुन कि ठेक नंग जीता ठेकी के दे लो लसी नौ न दिन के उस मारफान स्कूल तो दुन लो पु मत दुन लो ले पु बंग के चौकी के सी कदो का भी पिया पुफान बकार बिंग अलोंग रात फन समय निली लबंग सोचिता बन बची नी बंग के उस मार लोग चार ली अलोंग चेराप चितु दुन नौन नंग ली तुम खीती की चलांग नाम सोन कपड़े का साइज क्लेम सोन सी जो पदाप चलांग नाम लो बोलते नंग ली तुम खीती तमी मिस हैं जी लसी लब उसमार डाल बुसन तक थाक सी नंग तुम चलांग दुन बीमेल लो बोलते मोनी सी के मिसेन ना उसमार सी नंग मान पो लसी नीली के अहोकलाम लो पिनान तुम हने पुलो लके इली तुम सेविंग बेंग लॉन्ग सन सेविंग अकाउंट लो इली तुम सी दाग जोंग सी इली तुम लांग दुन बॉम थान दुन बॉम रे दुन बॉम लो ते नंग थेक बॉम पो पिने बॉम पो लसी मोनी सी बंग के दाग नंग प्लेइंग पो नंग ली तुम आ इंटरेस्ट अच्छे लॉन्ग पो नंग ली तुम मो लसो सो मार तुम थेक सेर रे सेर लो पुते नंग ली तुम लॉन्ग सी ला बंग सो मेच्योरिटी बंग के नंग ली तुम लॉन्ग सी मो इनको नंग चिली तुपो नंग ली तुम नॉन पिनी आनी नंग की नंग दार ले दाम ता मीनिंग ओय नंग ने पी दू नॉन चे लांग दू नॉन मोन सी लके थेक सेर लो ते नंग चिरु विवेक पो लसी कदो कवे पी पो फन सी तमे नीले की जुर सी चुनिंग रिले थोट लो उसो मार का चार लिया रोंग नंग ली तुम बारे बिट अकाम ने दो सी तमे अपोर ची पी दू नंग के आके नंग सोट लो नंग तुम अपोर ची पी दून चे लांग दू नो पुलो ते नंग ली हेम सो मार थेक वेक जी आनी सी मुनित मान वेक जी लसी लसो निंग ची थे पेन सी नीली लबंग सो कर जू के थाक बंग के पी जुरिक लो
1: चुरु पी गन लो मैच अब उठा गए चेथान नाम बोलते अपोर्ट नंग पिगला स्टमे इलि तुम लापन अपोर बेन स्टमे इलि तुम चेथान लोंग लो जिमुम लोंग लो लपेंटे रेडियो कार जु आरा तुम स्टमे नंगली लोंग बेन स्टमे आजा का बिदी के नंग लोंग पोन पो मते नंग चिनि दुन लो पिया पो तुम स्टमे मो फिबांग चेथान पोन थेक पो लासी नंगली फान लदाक स्टूडियो लोंग बांग पो चुरु पिग गन लो मुके बांग जिया पोर स्टमे तुम ला मैच अब उठा बांग चेथान जिमुम बम लना पोना पिनी बांग अपोर लाम दो कक पोट लापन पेन ले तुम जिहु जि पुरा पुथाक बांगे इनटोन पोन निगुना
0: कार्डो
2: लपोन पोर्ण लितुम तक लांग चामिक अंगडें अलोंग मे चपुथा थान बांग टेंशन बे लपेन हुट बांग हारमोनी बेयंग बोंग चि हुचिपुत आरजु इक्लोंग टांगलो लाकी आकाशवाणी दीपू केनांग सट कपा छिनियालाम जिर आरजु इक्था इफू किसु पुछी छिनी लोते पेडेर डिपिन पेन डॉक्टर अलोंग छेपाक लांगडाम सेराक नांगजी आथेमा लबांगसो फू किसु कि मेलेरिया किसु मानडेटा थेक डॉक्टर अतुम गेथाना तेंग पेन वियासत लांग क्लेम नांगजी आजो मेगेजांग हो चितिमालान चिहिंग नांगजी हेमकॉम हेमराय लोंग बाबी पांगराम लोंग लेदेत नांगजी जों से कांगराम दु पुलुति पांगथाय पेमी नांगजे लांगबुंग लांगप्लेट अंता पाविदेत नांगजे जों सि दु पुलुति लसोदी मलोंग ब्लीचिंग पाउडर मति ब्लीचिंग अदु रिक कलिते ते नांगजे किथु कांगचे हरमु अंता हेम कम हेमरा लोंग वारथाप थेदेद्रा एलोंग अदिम हिलिक हुटपेन हादाक्सि वारदम छत नांगजे लांगकापली इया पाइप टेप लपेन लांकपांग पेन अतिबुक जोंग सिकोनाथ नि आकेवाक दु पुलोति मार्थिन पेमी नंगजे निंग छिबी इथा आर्निकांग सामा पोरलोति हेमार लुपेन चितिम किपलुंग असाय क्लेम नंगजे लहाय असाय के हिजुंग मिहिकार उत फे एमी के थोर लपे नन मालम हिथिकुलात आलोंग नंगके क्लांग चितिमापी किपलुंग दुवाय हाय हुई थोर लपेन के नंगजे केनांग सट कपाचिनियालाम जिरके लापानिक चटलो

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी

0: दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Aduntu lunchitu aluna chaimek angdeng along aprangsi amri cassius kilunalun archwick sinang alunalam thi wangnon pini chesong anokbi doan.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
1: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज भी हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261107। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।

0: प्रतिशत खाता धारक महिलाएं हैं। जनधन खाता धारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
2: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
3: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महान दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
1: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
4: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरल में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
6: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
5: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2,00,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्ते की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वर्षा के मी चु एंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दि फुअलंग आसन आसन कपचे थांगा वर्षाई दो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे कि थी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आ रोंग अजे

0: পিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহতালিকা আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027, আমাৰ লোকপিয়ল আমাৰ বিকাশ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आडुंथु इंग्लिश आलू नजाय में अंग डेंगलों अप्रांसी सेलिन डियोन किलो नलून आर्जुक सिनेंग आलू नलम थे बिकॉज यू लव मी।

लपोन अपोर्णांग लितुम अंगराक महंता किलुनालुन आर्जु इकलांग टांगलो अदुन्थु रोदर सिथी लामार जानालों पापोन किलुनालुन आर्जु इकसिनें आलुनालाम थे एंधारे एंधारे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दलेर मेहंदी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं एल्बम तुनक तुनक तुमसे ये गीत, जिसे तैयार की, इसकी धुन तैयार की है रवि पवार और दलेर मेहंदी ने, और शब्द रचना भी दलेर मेहंदी की है।

चंदन दास के स्वर में अभी आपने ये गजल सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं मेड इन इंडिया इस एल्बम से आलिशा चिनॉय की आवाज़ में एक बहुत खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल आलिशा चिनॉय और श्याम अनुरागी के हैं। संगीत की धुन तैयार की है बिद्दू ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गजल जिसे हमने लिया है जिगर से जिगर तक इस एल्बम से। स्वर हैं महेश चंदर और कविता कृष्णमूर्ति के, शब्द रचना जिगर मुरादाबादी की और संगीत से धुन तैयार की है महेश चंदर ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन

0: योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है यादों की महफिल।

अभी आप सुन रहे थे शिरडी के साईं बाबा फिल्म का गीत, जिसमें स्वर थे मोहम्मद रफी, जानी बाबू, अनूप जरोटा, अनुराधा पौडवाल और साथियों के। शब्द रचना मनोज कुमार की और स्वर रचना पांडुरंग दीक्षित की।

रिश्ता कागज का। इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत राजेश रोशन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत सबसे बड़ा रुपया फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में पिरोया था बासु मनोहारी ने। अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में रंगीला रतन फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: अरे भाई मोहन, ये कौन है भाई?
2: नहीं मैं नहीं जानता ये कौन है।
1: तुम जानते हो कौन है?
2: ये कौन है?
1: कौन है? कौन ये?
3: मैं हूँ रंगीला रतन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है स्वामी फिल्म से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने और अमित खन्ना के बोलों को शुरू में पिरोया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत हमने लिया है बड़े दिल वाला फिल्म से। आर डी बर्मन के संगीत में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: और के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है विजेता पंडित और किशोर कुमार के स्वर में जॉनी और जीनी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: वो ही कहे जाने अच्छा नहीं।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है चितचोर फिल्म से, यशुदास के स्वर में। ये है गीत और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

अब आपको हम सुनवा रहे हैं जिंदा दिल फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जंजीर फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गुलशन बावरा के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

चरस फिल्म का एक गीत था जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर कर आ रहे हैं।

बात यही है, उन्हें पहचान कार्यक्रम के गीतों की अलग सा और दिलचस्प लेता है तो कोई आज से यादों का नया पन्ना इन संकेतों यानी इन गीतों का साथ ही आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सुना देते हैं आज की इबारत, पढ़ ली है लेकिन कुछ श्रोताओं के पढ़

है कि क्यों आज फिर इतना दीवाना सौदाई सा मन है, इतनी वर्षों की तन्हाई यह दिल। काश कोई राह ही मिल जाए, कोई आहट आ जाए तो शायद मन हो जाए।

श्रोताओं, रक्षाबंधन का पर्व है तो सबसे पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं ये। बताइए किस फिल्म का गीत है?

जी हाँ श्रोताओं, अंधा कानून फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। रक्षाबंधन पर्व है, इसलिए इस गीत से इस सफर की शुरुआत होना तो बनता ही है। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत था। सभी श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। गीत के बाद पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। श्रोतागण हमें कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमने भी हमारी तरफ से विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को विविध भारती पर कह दिया है कि रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिल बहुत मंगलमय हो। साथ ही सुरीला सफर में हमारे श्रोता कह रहे हैं कि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। ये इबारत से जुड़ी बात इन्होंने इस कमेंट में लिखी है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और इंतजार की हर आहट दिल में एक नई उम्मीद जगा जाती है। तन्हाई में बैठी रूह किसी अपने की तलाश करती है तो सरगोशी उसे मोहब्बत और लौट आने की आस दिलाती है। काली घटाओं से लेकर पुरवैया तक हर मौसम जैसे उसी अनकहे प्यार का पैगाम लेकर आता है। आंखें किसी की सूरत देखने को तरसती है और दिल किसी एक कदम की आहट सुनने को बेकरार है। यही तो मोहब्बत है, जहां दूरी में भी अपनापन और खामोशी में भी एक मीठा सा संवाद सुनाई देता है। फिलीपींस से हमारे श्रोता जुड़े हैं और साथ ही सूरत गुजरात से भी श्रोता जुड़े हैं। श्रोताओं का कहना है कि यह संवाद रूह की गहरी तन्हाई और सरगोशी की सांत्वनामयी धीरज के बीच बुना गया एक अत्यंत संवेदनशील और मर्म स्पर्शी आत्म संवाद है। इसमें विरह की टीस, अधूरे अफसाने का दर्द और प्रिय के लौट आने की व्याकुल प्रतीक्षा को बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में पिरोया गया है। जहां रूह अपने टूटे हुए मन और अंतहीन बेचैनी से जूझ रही है, वहीं सरगोशी मीरा मोहन जैसी निश्चल भक्ति और प्रेम का संबल देकर उस अंतहीन इंतजार को भी एक पवित्र सार्थकता दे देती है। यह इबारत खूबसूरती से बयां करती है कि सच्चा प्रेम दूरी और खामोशी में भी जीवंत रहता है। जहां दो बेकरार दिल भले ही जुदा हो, पर एक अनकहे अदृश्य रास्ते पर एक दूसरे की आहटों में धड़कते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे श्रोता कह रही हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में हर इंसान का मन अलग अलग, सोच अलग अलग है। प्रेम से भरा एक स्पर्श न जाने कितनी कल्पना, कितनी भावनाओं को जगा देते हैं। मन की सरगोशियां कमाल है, यह रूह को छूकर रूह तक पहुंचती है। बिल्कुल सही। फिर ये मन बेचैन क्यों रहता है? जीवन की सुंदरता छोटे पलों में है, वे पल जब हम ट्यून करते हैं सुरीला सफर और चले जाते हैं एक अनजान सफर पर, जहां है मन को लुभाने वाले गीत आज। जी, ये हमारी श्रोता कह रही। हमारे अगली श्रोता कह रही हैं कि रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और तन्हाई में दिल हमेशा ही सोचता रहता है कि कुछ ऐसा हो कि उदास मन को सुकून मिल जाए। हराहट खामोशी के टूटने का इंतजार करती है और यही इंतजार कभी अकेला नहीं छोड़ता। लगता है कि कुछ तो साथ साथ चल रहा है जो मन अपनापन और मिठास भर देता है, और उन्होंने कुछ गीत भी लिख भेजे हैं।

अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत को किसने लिखा है ये बताइए।

0: लिखा किसने है? जी हाँ, इसका जवाब आप दे रहे हैं कमाल अमरोही। और जी हाँ, बिल्कुल सही है ये जवाब। और संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। अब लेते हैं एक संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारी एक श्रोता कहती है कि रूह यानी आत्मा एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जिससे जीवन चलता है, जिसका चुपके चुपके धीरे से कुछ कहना आज की इबारत में लिखा गया है। बिल्कुल, जब जुबान खामोश होती है तब रूह दिल के कोने में बैठकर सरगोशियां करती हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। आज के संभाषण में अकेलापन, प्रेम, प्रतीक्षा और व्याकुलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है।

हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि इस आलेख की सबसे बड़ी रचनात्मक विशेषता है हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों के बोलों को बिना किसी झटके के गद्य में पिरोना। कालीघटा के साए, प्यार के बदले प्यार दिया, सूरत मीरा मोहन की पुरवैया बाण चलाए और उंगलियां किसके प्यार की जैसे काव्यात्मक वाक्यांश सिर्फ गानों के संकेत नहीं लगते बल्कि ये संवाद की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। बिल्कुल, हमने गीतों से इन वाक्यांशों को उठाकर हमारी इबारत में शामिल कर लिया है ताकि आप पहचान सके कि कौन सा गीत है। हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि रूह और सरगोशी की आपसी संवाद है, मन में उठते विचार, प्यार, मोहब्बत, तन्हाई, बेचैनी, किसी के आने की आहट मिलने की उम्मीद के लिए इंतजार में, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, ऐसा वो गाना अंदाजा लगा रही हैं इस गाने का। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि कार्यक्रम सुरीला सफर है सुपरहिट। साथ ही दूसरे हमारे अगले जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक साधारण धागा नहीं बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट विश्वास, अगाध स्नेह और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प और साथ निभाने का पवित्र बंधन है। राखी का भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और एक दूसरे पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं और भाई उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। बिल्कुल सही।

जी हाँ श्रोताओं, ये तेरे घर के सामने फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि इश्क की मर्ज से त्रस्त और तरस बयां करती दो दिलों की इस पंडित तड़प को रूहानी सरगोशी में दर्शाया गया है। हमारी इबारत के बारे में ये बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। तन्हाई की तड़प भी इम्तिहान लेती है, हुस्नो इश्क की रूहानियत और खूबसूरती की बेजोड़ कानाफूसी फुसफुसाहट में सिमटी इबारत। संगीत में सफर का इंतजार इन्हें रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा, जो कि अभी चल रहा है। बिल्कुल, इस इबारत में हम इसी तरह से हमने वाक्यांशों को पिरोया है, जो लगता है कि जैसे कोई प्रेम में त्रस्त व्यक्ति है जो बात कर रहा है, सरगोशी कर रहा है हवा के साथ, रूह के साथ। आपने बखूबी पहचाना है। हमारी एक श्रोता कहती है कि आज की इबारत तन्हाई, मोहब्बत, इंतजार और किसी अपने की आहट की उम्मीद के इर्द गिर्द घूमने का भाव है। रूह और सरगोशी के संवाद के माध्यम से उस मन की बेचैनी दिखाई गई है जो प्रेम की तलाश में है और हर आहट को किसी अपने के लौट आने का संकेत समझता है। एक और श्रोता कहते हैं कि सरगोशी ने जब भी हवाओं के रुख पर अपना नाम लिखना चाहा, रूह की खामोशी ने उसे एक अनकही गूंज की तरह थाम लिया। यह कैसा विरह है, जहां दूरियां सिर्फ कदमों की हैं पर धड़कने एक दूसरे में ही सांस लेती हैं। सदियों लंबा यह इंतजार अब कोई दर्द नहीं बल्कि एक मुकद्दर बन चुका है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए मंजिल की चाहत भी फीकी पड़ जाती है जब रात के सन्नाटे में यादों की कोई मध्यम लहर छूकर गुजरती है। तो ऐसा

है जैसे जिस्म की कोई हैसियत ही ना हो, बस दो अनंत वजूद हैं जो एक दूसरे में विलीन होने के लिए तड़प रहे हैं। यह मिलन की आस नहीं बल्कि उस अधूरी दास्तान की रूहानी मुकम्मलियत है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती, इसीलिए तो सरगोशी की जा रही है। हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि इस जिंदगी के दूसरे मायने ही हैं इंतजार। यहाँ सबको मन मुताबिक

हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि इस जिंदगी के दूसरे मायने ही हैं इंतजार। यहाँ सबको मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है उसी से समझौता करना होता है और फिर रह जाता है एक लंबा इंतजार। तुम खास ही नहीं, हर सांस में हो, रूबरू नहीं हर एहसास में हो, मिलोगे पता नहीं मगर हर तलाश में हो, तलाश पूरी हो ना हो मगर हर आस में हो। क्या बात है, आपने तो शायरी भी कर दी है। और फिर बहुत सारी जिंदगियां इंतजार में यूं ही बीत जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेम में इंतजार तो होता ही है। अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज की रूह और सरगोशी की इस अनकहे संवाद ने मन के तारों को छू लिया है। इस भावुक और गहरी इबारत को पढ़कर जो मुख्य शब्द और उन आधारित जादुई गाने जहन में आए, उन्होंने वो गाने भी हमें बहुत सारे लिखकर भेजे हैं। क्या बात है, बहुत सारा काम आपने किया। अगले श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति कोमल नहीं होता, वह हमारे स्पर्श को ही करुणा में बदल देता है। प्रेम में जीने वाला स्पर्श कर सकता है, जकड़ता नहीं। वो आपको छू लेगा पर चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको अपने पास रखेगा पर स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। प्रेम की असली कसौटी यह नहीं कि हम अपने प्रियतम के प्रति कितने कोमल हैं, बल्कि यह कि हमारी कोमलता उससे आगे समूचे अस्तित्व तक पहुंचती है या नहीं। साथ ही हमारे श्रोता राखी के पर्व के लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं और विशेष संदेश भेज रहे हैं। राखी पर्व एक त्योहार भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता है, ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, जो कि रेशम के धागे से बड़े ही प्यार से भाई की कलाई पर बांधती हैं और मिठाई खिलाकर ईश्वर से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, इसलिए भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है जी।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जोशीला से, बताइए किसने गाया है। पर्दे पर भी किसने गाया है ये भी जरूर बताएं।

जी हाँ, इस गीत के माध्यम से भी हम सुन पा रहे हैं कि कितना दर्द है, इंतजार है और तन्हाई है। जोशीला फिल्म का गीत था, आवाज थी किशोर कुमार की, साहिल लुधियानवी के बोल और आरजी बर्मन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर किसने गाया है इस गीत को, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, देवानंद ने। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि इस तन्हा रात के सन्नाटे में जब चांदनी चुपके से आकर जमी को गले लगाती है, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सरगोशी हवा के झोंके बनकर मेरे कानों में कुछ कह रही हो। विरह की इस खामोशी में यादों का एक हंसी कारवा चलता है, जहां आंखों में इंतजार के अश्क तो हैं पर दिल में एक रूहानी सुकून भी है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि सरगोशी, क्योंकि शायद दूर कोई और भी तुम्हारी तरह आप ही बेकरार है और दोनों के बीच बस एक खामोश रास्ता है जिस पर किसी एक कदम की आहट का इंतजार है। ये जो पंक्तियों के बारे में इन्होंने बात की है, ये भाव इन सुंदर लाइनों से मिलता जुलता इन्होंने कुछ गीत हमें लिखकर भेजा है कि खामोशी फिल्म का गीत है शायद, कि तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। आप अंदाजा तो लगा रहे हैं कम से कम, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज इतने लंबे संवाद आलेख को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, शायद इस भाव को समझ सके। तन्हाई की दीवार पर उम्मीद की तस्वीर बनाते हैं, एक तेरी आहट के लिए हम खुद को सजाते हैं। इस खामोशी में छुपा है सदियों का इंतजार, हम आज भी हर सांस में सिर्फ प्यार जगाते हैं। क्या बात है? एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम में जब किसी एक के साथ गहराई से जुड़ता है, तब उसके लिए संसार केवल एक बाहरी भीड़ नहीं रह जाता, वह कोमल अनुभूति के साथ आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यहाँ उसकी चेतना और संवेदनाएं विस्तार से नहीं, गहराई से जीने लगती है। प्रेम दो में पूर्ण हो जाता है, या दो केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि दो अस्तित्वों के बीच सेतु है, जहां व्यक्ति पहली बार स्वयं को किसी और में प्रतिध्वनित होता हुआ अनुभव करता है। यह अनुभव होने लगता है कि जो रिक्तता संसार भर से नहीं भरी, वह किसी एक उपस्थिति से भर जाएगी शायद।

हमारे पूछे सारे सवालों के जवाब भी आपने बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए हैं। सभी जवाब हमें मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन संदेशों के लिए।

में घुलकर घुल मिलकर मेरे पूरे वजूद को भिगो जाती है। यह विरह और इंतजार का सफर अब थकाता नहीं है बल्कि हर सांस के साथ तुम्हारा एहसास और गहरा कर देता है। दूरियों के इस धुंधलके में भी सुकून का एक दिया जलता रहता है, क्योंकि फासले सिर्फ जिस्मों के बीच होते हैं, रूहों के दरमियान नहीं।

एक श्रोता हैं जो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था, तो आज का त्यौहार वो कुछ उदासी में ही मना रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार है। एक श्रोता कह रही है कि मैं दूर देश में बैठी हूँ, मेरे 3 भाई लोग लखनऊ में हैं, 2 बहनें हैं, वे सब आज मिलेंगे और राखी भी बांधी जाएगी त्यौहार पर, सब भाई बहन होंगे, मैं आज तन्हाई में इतनी दूर बैठी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फ़ोन पर तो विश कर दिया है पर वो बात नहीं, बिल्कुल दूरी है तो त्यौहार की वो बात कैसे महसूस हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले गीत की ओर। ऐसा लगता है कि तन्हाई भरा सफर हो रहा है, कहीं दूर ही निकल जाएं तो कैसा रहेगा।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, मजू सुल्तानपुरी के बोल और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के साथ हमने कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा था, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न पूछा जाए? क्यों ना उस गीत का ही आनंद उठाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है सुरीला सफर। संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले श्रोता का, जो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी आपके सुरीले सफर के साथ चल रहा है। आपके हाथों की राखी पोती से बंधवा ली है, क्या बात है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कई श्रोताओं ने कई गाने भी लिखकर भेजे हैं, तेरे घर के सामने, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, और कई सारे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की शुरुआत में आपने रक्षाबंधन का भाई बहन का गीत सुनवाया, हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज छुट्टी का दिन और घर पर बच्चों ने भी सुना, आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोहब्बत का सबसे गहरा रंग शायद इंतजार ही है, वह इंतजार जो आंखों को नम करता है मगर उम्मीद को जिंदा रखता है, और तब एहसास होता है कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह खामोशियों में सुनाई देता है और यादों में महकता है, दिल को यह यकीन दिलाता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी उसी मोहब्बत, उसी बेचैनी और उसी इंतजार को अपने सीने में संजोए बैठा है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि इतने गीत तो संप्रति याद आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे गीतों की लिस्ट हमें बनाकर भेजी और इसीलिए वो हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से गीत इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनते जाइए। तो अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम पत्थर के सनम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीतबद्ध किया है इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और साथ ही संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेत्री।

ये गीत भी था इंतजार के लिए। और एक श्रोता हमारी कह रही है कि आज तो थीम रक्षाबंधन पर होनी चाहिए थी क्योंकि आज बेहद खुशी का माहौल है, पर कोई बात नहीं, सुरीला सफर में सुरीले गाने बजेंगी तो वह भी माहौल खुशनुमा हो जाएगा। भाई बहनों की थीम रहती तो भाई बहन वाली बात, आज रक्षाबंधन की मिठाइयाँ मिलने वाले नेक उपहार की बात होती। आप बात तो बहुत अच्छी कह रही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम थीम बेस्ड नहीं है तो गाने तो सुरीले हमने आपके लिए शामिल किए ही हैं, उन्हीं का आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीत लिखकर भेजे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा लिखे गए उन गीतों में से कुछ गीत तो यहाँ हमारी इबारत के जरिए और हमारे गीतों में जरूर शामिल हुए होंगे। जी हाँ, आप हमारे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि क्या था इसका उत्तर, कि हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि कौन है अभिनेत्री जो भी गीत आपने सुना। जी हाँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं, वहीदा रहमान, बिल्कुल सही जवाब है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकता रहे तेरा जीवन, खुशियों से भरा रहे हर एक पल तेरा दिन। ठीक है, वो हमें दुआ दे रहे हैं और क्या बात है, बहुत अच्छी आपने लिखा है, धन्यवाद। रक्षाबंधन, अगले हमारे जो श्रोता कह रहे हैं कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, जिम्मेदारी का संकल्प है, इसकी हार्दिक बधाइयां भी वो दे रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मोहब्बत रूह में उतर जाती है तो वक्त, दूरियां और दूरियों की तन्हाई सब बेमानी हो जाते हैं। रूह की सरगोशी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क जिस्म की चाहत नहीं बल्कि दो आत्माओं का वह पाकीज़ा मिलाप है जहां शब्द खत्म होते हैं और सिर्फ बेपनाह एहसास बाकी रह जाता है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत अध्यात्म, प्रेम, मौसम, विरह, इंतजार को लिए हुए है। इसी तरह हमारी अगली श्रोता कह रही है कि सरगोशियां रूह और खामोशियां मन की गहरी अवस्था, आत्मा रूह आपका वह हिस्सा है जो दिखावे से दूर बिल्कुल सच्चा और पवित्र होता है। खामोशियां बंद जुबान की आवाज होती है, जब मन और रूह की आवाज से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा, कई बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल

समय बस समाप्त ही हो रहा है और इसी को देखते हुए हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम था हीरा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो आज का सुरीला सफर आपने तय किया है पूजा नारायणिया के साथ, आपके खूबसूरत संदेशों के लिए और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी यादों को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8

0: लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
4: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.5

0: एक तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत। फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत। फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी छोटी बहन। आइए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में। सायल उद्यानवी के बोल खयाम का संगीत है।

0: चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार खयाम।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये

0: दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फूल बने अंगारे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी।

चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली, कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई, ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सारा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा

0: नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में। भरत व्यास की बोलते सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

बहुत मुश्किल है दोस्तों ये समझ पाना। कई बार लोगों का मिलना सुहाना लगता है और उन्हीं से मिलते हुए आंखें चुराई जाती हैं। दरअसल ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जब हम मिलना भी चाहते हैं और नहीं भी मिलना चाहते। ये अजीब सा दो राह होता है। बहरहाल आपको हम बता दें, ही राजा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और दोस्तों ये वो नगमे हैं जो हमारी सांसों में बसे हैं, जो हमारी जिंदगी के रास्तों पर हर वक्त साथ निभाते हैं। सदाबहार नगमे प्रोग्राम का सफर सुरीला हो, इसका विविध भारती बाकायदा ख्याल रखती है। चलिए

अब अगला गाना सुनते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी बात है जहां पर साथ निभाने की बात है, तो सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। भरत व्यास ने इसे बेहद खूबसूरती से लिखा है और धुन बनाई है सरदार मलिक ने। और गाना सुनते हुए जरा याद कीजिएगा कि सरदार मलिक के सुपुत्र हैं जो आज भी फिल्मी दुनिया में खूबसूरत संगीत दे रहे हैं। फिलहाल सुनिए ये गाना फिल्म सारंगा।

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में भरत व्यास के बोलते सरदार मलिक का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सखियों, आपको मालूम है हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ किसी बहुत बड़े बदलाव से आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई छोटे छोटे से क्रियाकलाप जो हमारे आसपास ही होते हैं वो भी हमें खुश कर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना है तो रिमझिम बरसती फुहारें ये हमें खुश कर देती हैं, और आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। इसी दौरान बहुत सारी बचपन की यादों में हम खो जाते हैं, और इन्हीं यादों में हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो हमारी सखियों की खुशी के कारण क्या हैं, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में हमारी सभी सखियों का, सभी सहेलियों का। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार, और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए आज का पहला कॉल, सुनते हैं किन सखी ने हमें किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से जुड़ी हैं हमारे साथ।
1: मैम जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है, हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हरसे मानसर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो पंजाब का मौसम इस समय कैसा है?
1: गर्मी बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
0: क्यों, बारिश नहीं है वहाँ पर?
1: का नाम ही नहीं ले रही।
0: तो बारिश ना होने से जो उमस है और गर्मी है वो बहुत
1: उमस
0: ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा है मैडम जी।
0: अच्छा दक्षिणा जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैडम जी, मैं घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी काम करती हूँ।
0: तो दुकान पर जो काम करती हैं वो किस तरह का काम होता है आपका?
1: मैडम जी, दुकान पे हम शूज बेचते हैं।
0: शूज बेचते हैं।
1: हाँ जी,
0: आपके अलावा कोई और भी होता है दुकान पर मदद के लिए, जैसे आपके बच्चे
1: हाँ
0: हैं या
1: जी,
0: पति हैं?
1: हाँ जी, पति हमारा दो भी साथ ही रहता है।
0: अच्छा, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो अपनी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं मैडम जी, मेरा साया फिल्म का,
0: मेरा साया फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का मेरा साया फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ, जिला
0: हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप?
1: हिसार, उकलाना मंडी।
0: अच्छा, बताइए आप
1: जी
0: क्या
1: मैम।
0: करती हैं?
1: जी मैम हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, तो दिन भर में कौन से काम हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं करने में?
1: सबसे तो मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है जी।
0: अच्छा, ये तो हुआ रेडियो सुनने वाला, आपकी पसंद का काम जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है और आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है दिन भर के काम के लिए। लेकिन घर के कुछ काम होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं।
1: सफाई और फिर खाना पीना, पकवान बनाना, गुजिया, गुलगुला, पकोड़े, यही सब
0: ये सब सर बारिश के
1: जी।
0: पकवान है जो आपने बताया ना, गुलगुले, पकौड़े, ये बारिश के मौसम में ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
1: जी मैम पसंद तो किए जाते बारिश के मैम, लेकिन त्योहार भी तो चल रहा है। नागपंचमी नहीं थी? नागपंचमी 17 तारीख को तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ना नागपंचमी। उसके बाद फिर रक्षाबंधन।
0: और कौन से त्योहार हैं जो आपके शहर में या आपके घर परिवार में ज्यादा मनाए जाते हैं?
1: जी मैम दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गए, और वो करवा चौथ तो बहुत शौक से मनाते हैं।
0: तो सरिता जी, आप जब कॉल करती हैं तो अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं। आज आपने कौन सा गीत चुना है?
1: जी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है रक्षाबंधन के लिए।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं बिया माँ मुन्ना बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से। मैं
0: कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।
0: अच्छा, बेलगाम। आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम,
0: जी।
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहाँ घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का,
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है
1: हाँ
0: बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम, सबसे अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैं मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: और आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रंग फिल्म से। तुझे ना

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं।
1: मैम मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: जयपुर से।
1: और मेरा नाम कृष्णा सिंह मैम।
0: कृष्णा सिंह। कृष्णा जी आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी।
1: मैम सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल खिलाना और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम,
0: हाँ जी
1: तो मैं वो करना पसंद करती हूँ।
0: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: खूबसूरत है वो इतना।
0: रोग फिल्म का खूबसूरत है वो इतना।
1: जी मैम।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी
1: जी
0: हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ मैम, थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है, तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं, लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छा काम है, और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर
1: जी
0: एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
1: जी मैम,
0: वंदना जी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
1: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
0: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं। बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियाँ अपने आप बनी रहती हैं।
1: जी मैम, और
0: अच्छा,
1: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं मैम।
0: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है, और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
1: जी मैम,
0: तो बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम?
1: मैम रिम झिम बसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
0: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैम,
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली। हाँ जी
0: हाँ जी नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं।
1: जी मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ मैम।
0: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
1: जी मैम मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ मैम।
0: हाँ जी सुल्तानपुर से बात
1: मेरा
0: कर रही हैं।
1: हाँ जी मैम मेरा छोटा सा शहर है मैम। मैं ब्लाइंड हूँ मैम
0: जी
1: जी मैम। और मैं बैचलर हूँ मैम। मैं
0: अच्छा
1: बैचलर हो चुकी हूँ जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से,
0: जी
1: तो मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
0: अच्छा, आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
1: मैंने अवधी लोक गीत गाए थे मैम
0: तो आज हमें सुनाइए अवधी लोकगीत।
1: जी मैम।

0: मैंने यही गाया था
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने।
0: जी।
1: मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं?
1: मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से।
0: झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहां से आप बात
1: हाँ
0: कर रही
1: दीदी,
0: हैं।
1: हाँ दीदी,
0: बताइए आप क्या करती हैं मालती?
1: हाउस वाइफ हूँ दीदी,
0: जी
1: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
0: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई, घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं।
1: जी,
0: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
1: दुकान पर वो तो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में।
1: दीदी
0: अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम हैं जो आपको पसंद आते हैं?
1: मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है। जी
0: सेहतनामा अच्छा लगता है।
1: दीदी जी
0: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
1: जी दीदी
0: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
0: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
1: इसे

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं धनेश्वरी मठरिया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं
1: मैं
0: धानेश्वरी जी?
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी
1: मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही आप ना?
0: हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और आपने शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे, और बातें तो की नहीं। अपने बारे में बताइए
1: हाँ,
0: हमें।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: हाँ
1: घर में
0: जी
1: रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं।
0: जी
1: मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस।
0: हाँ,
1: हाँ, अब
0: आर्मी
1: मुझे
0: से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे शहरों
1: जी
0: में आप रही होंगी।
1: हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ और दानापुर में रही हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ अपने घर पे।
0: तो अब रिटायरमेंट के
1: जी
0: बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं।
1: जी जी जी फिर रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं।
0: अच्छा, और इतने
1: जी
0: सारे
1: जी
0: शहर जब आपके पति देव का तबादला होता रहा, तो कौन से शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
1: अच्छा, तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है,
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा था।
0: और आपके क्या क्या शौक हैं?
1: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल वूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है,
0: हाँ
1: पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से। सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाली घर जाना है करके। जी
0: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक
1: जी
0: से, ये बहुत अच्छी है।
1: मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर से भी होता है ना,
0: जी
1: तो उसमें मैं कुकिंग करी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
0: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?
1: ए मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं।
0: जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी
1: यस
0: चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत
1: हाँ,
0: सुनवाएं आपको?
1: प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
0: आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

लुन चेठा कांग डेंग लॉन्ग पेन पिनी लुन जेर का पर जुपन के ला पांसी कांग टोन दिगलो स्टूडियो पर गंग साम पर फाइव पिराच टीम के चौक पोला से आकाशवाणी गुवाहाटी महाबहु आंग डेंग लॉन्ग पेन कार बिया जाय में के पिनी ला पांसी कांग टोन दिगलो दो मिठाक में कुरवांग टू

वर्षा के मी चुएंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दि फुअलंग आसन आसन कपचे थांगा वर्षाई दो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जिलीपुते लद्दाख आकाशवाणी दि फुअलंग नंग हुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक ची पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रेडियो नागार्जुन का चिंहना नन स्टूडियो घड़िया पर अनिका साम पर फाइव फोर अमिनिट फोप लाइटांगलो लासे आदंथु आं दें दामिलो नांगलाके रंग रोब अजामेक आं दें लबांसो आं दें अलोंग हान कातिकी लबांसो पुथा संजय इंटी लपेन हुदबांग जोनिस रंग फारा तुमांग बांग छोचिपुत आरजु एक्सिनांग
2: लाके ऑल इंडिया रेडियो दीपु पिनी लद्दाख स्टूडियो लोंग हान कातिकी लपेन हान कारचे पुथा लामथे चिहु चिपु दामजे फानसी लद्दाख बोरी पिनी लबांसो अलाम थे पुथाक चिहु चिपु पोंजिया फान इनुत हान कातिकी कारचे अबांगफु सार संजय इंगती फान नेलितुम दाक स्टूडियो लोंग फाइग्लो नेलितुम का चोफा तेंग पेन नॉन अलांगली नेलितुमा स्टूडियो आ माइक्रोफोन आ थेंग नो वांग पेन नाइनी तांगलो इंगती संग हो फ्रांसी के नेलितुम ऑल इंडिया रेडियो दिपुआ हिन पेन कार्डोम नांग पाजेरिक्लो
3: जुरुलो सा
2: अफ्रांसी नांगली हिन पेन थाने था नांगली लहान कति की कारचे कमेंट टू बेंसी नांगली का पंगचेंग दोनमा नांग थाने जिमा
3: निली हाना की ती क्लेम लापु चिहुंग दुत क्लेम दुत पो बैंके केदम तांग निकान हुत पेंसी निली क्लेम प्रांग ता क्लेम क्लेम है मैं तुम या सब लापु सन सिता मैं के ओंग दुंग बैंके लाके दम तांग अनिकान हुत पेंसी निली क्लेम पंगचेंग पो
2: लाके चुनिंग इंकोर हिनिया निकान लबांसो हान कति की কপি আহান কাতি কি পেন্সি নাংলিকে পাংচেং
3: পাংচেং পমতে নিলি লানিং কান ইসিয়াং বং পেন সনক্রিপ হ আকাম লিক্লেম পন
2: আই কপি পি আহান ল লাকে নাংলি নাং থানি জিমা
3: বিক্লেম পন কে লাকে হান থারবু কিচি আতে নিলি সনসি মি থাং গা চিবি আহান চিলি গা বিদে আসি কি নাম নাং সিকে ও
2: আচিলি বং কে
3: আচিলি বং কে
2: আই
3: সনক্রিপ হ আং বং পেন সনক্রে কে থম আন কে নি আ চিনি চে নাম না আ হানা মু কে লা
2: ইনতে নাং লি লহাই আ চিলি হুই কে কোনাত নে পেনতং এগ্রিকালচার অফিস পেনতং কে লং মা মতে হিথি কুলার লং পেনতং আ চিলি হুই বাং কে নাম ইগলো
3: আ চিলি পোলাম বাং কে নি লি হিথি কুলাত লং পেন সি নাম পন এগ্রিকালচার লং পেন

0: abdon diklo nang a chito dun diklo nang li nudvet sigati kiluma mate
1: Ani
0: nang li hemasor nang li po nang li paitum ta nang tiki dun ma nang klem dun
1: ni
0: ma
1: laki klem long sa ni li ke hajira puki pon ta chithek long de lang hajira ta pon pela posi ni li la pe ni li choran vet
0: nang li tum bahin yan cho
1: ni li tum bahin cho la do ana hanta a huda dak ni li chira chito dun bom stami ni li ki jor hin bang si bisi ki ong pinak po la kalu pin e bang ke la ni li chor bang si kalu lu
0: na na klem dun la ai ai intela haya han mo henang li pulo nang li methang si oto pen si pon si nang li jor jor la solong pine nang li long muni da tung wang pen pai kari la puso nang en nun ta duma
1: pai gari po bang ke je thek long li lang sa man pai gari ta nang en bang ve la ni li mi thang pai gari pi pu ta ve la si mi thang si la pu chi jor dun dun
0: ai tang te adun thalam pe chi thana mix na nang li la bang so han ka ti kia long ku pi pia ho or si nang li ka che pari deng ilo
1: मुहेत नि लिप लोसार माने पिनांग आं तुपु बांके दोआय आदर किसो आहाना मुवा दोर किसो पुसिपु सितामे होला आहाना दोर मु किसो पुस्तामे मुहेत नि आहाना मुचि पांगरुम एन पेन के सुली क्रेहिनीरा फारो ट्रक रंग कय आनि नि पादाम ला बांके हाना मुलोग लो नि लोग आबे दिया ता पोलो सिता होला दोआय पो बांग बांके निली पि ता पि पिन ला
0: hana long thang doi ta be
1: o pai ve ong te ni li hola hiru pudo
0: ai
1: la hiru angkur pa mi chi chit
0: ai
1: khoti si si parman ba in thanang po la theng i te la so lang sa po bak par bi ba so nang po la ha long si 250 ml lan bak a hiru wa lang pen hola tinki lang ke ama tinki do
0: ai
1: hola so tinki ke
0: pang wei po
1: a lin kre chok a lang ja ke hola dak pang wei pen si ni li la son son si in ki han ge aba थे दवाई पुलो तंगते आतंका ता पिनांग आनी दि तुमके दाम दोजी पे होला मे थैंक यू चोता ई ओके प्रान
0: हेनो ला
1: इंगुजी
0: इंति संग हो अदुन थोलम थे छे थाना मिक्स ना नंगली हान इंकी इंकेट लहाय अलोंग के हिरु अलांग पेन से नंगली कि आ
1: हिरु आ को तु थोलांग ला नालोंग आहु
0: ओ नालोंग आहु ओ
1: लाई
0: ओ लातामे
1: ला कता कोर्प बांगनी पुदाम दे ला बांगे बिदि लोंग दे ला सितामे बांग बांग ओकी प्रु पेंसिनि लांग दाम बांग ओकी प्रु ता ला हिरु आको नालोंग हु छि को लामा था दाम पेंसि इंकिगा छि दिमा पु पेंसि नीला का परमान पेंसि क्या पा
0: इनते ला नंग लिका परमान पेन के ला को को अनलो ला बांग सोंग टेक नंग ले जे टेक लोंग के ते
1: अपडेट पेन आनि सिनि नि बांग आं की के बोन बे सोंग छि टेक लोंग
0: ओय
1: ला सोंग लामा था दाम पेंसि इंकी माने उन एमा प लामबा सि माथा
0: ओय ला सिन नंग लिला बांग सो सि छे परि देन पोन लाय सिता लांग ली लासो के आपे ना के नाली इंकी ला है के बोर को पिने हो बंगा छे थेक लोंग ले
1: आ छे थेक लोंग ले
0: आय आय अनुन थु छे था ना मिक्स ना इंती सा हो नाली ला बंगसो आहान का ती की पेन है दे नाली मेथांग कचे पेरें इया अवार साइ के दो पु नाली पुदा मिग जे मा
1: हान पोलाम बा के ला नीली छि माथा दाम तेंग बा के नीली जा कों दो ति अनवेन थे नीली रोंग पेन nili hola ka chojo just make ni hola hanjang lang su la dili market lang si jordan dam ata
0: adap si
1: jordan si hola nili rong pen hola dak anili ka pali di pan kontai sira chi tim nangi saigel pen
0: oi
1: si king ben te kontai ni ra a chi tim an bak ba kontai ni la son ende ji hola so teng pen nili lang dam te un idet na hai la han bank ki
0: adun thalam te je thanam ek sanang intia sang ho nangli han ka ti ki ji afan non eprang bang ke ko puson si nang li klem pon ji pu nang li ke mang ko sona bidi ben si nang li han an su se ka pa me ji ka pang jang yi pu la ben a dang si ta me an su se ka pa the ji pu nang li la so ke mang do ma nang than ji ki ma
1: do ke do sa ki mang pa bang ke man e la son ho la bang a khai son mi ya tu ma son bengli bihari tu ma son si anin kan wang ka la so long de long si के क्लेम पु बंगाली नीली बंगाल लोंग दे लारो ते होला तुम बंके क्लेम ता मी पु इदा बंगाला तुम के कि नाम हो और पिनंग को हो और को अन म के पी ला अनसी आ हांदा की मी चो सिस्टम में नीली के हो और पी पे पिन पिना का पो अलोंग का प्रे से को डायरेक्ट बॉय असी नीली नॉन ला हा के क्लेम जी पान ला नॉन रिट पान बोम नो अलोंग पे ने मी काय पान बोम नो
0: ओय ओय
1: नपस असी नी मा नीली मा था बंगला पिनिंग के क्लेम पेन ला नॉन के बंग अन कान लो पिनिंग लो सब सुप दंग पथि थे जी माथा दहाक तुम पुलो हान के लंगरोय कु नंगजी माथा कि पुपु लैंग दो नंगजी वो फैट इंगी तुम चिथान लो

वर्षा के मी चु एंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दि फलंग आसन आसन का पचे थांग वर्षा दो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग नंग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दि फलंग नंग हमरी इक्तामी मोबाइल

জংসি চিংকি ইকচি পুলতে মোবাইল নম্বর কে 9476880085 লাপেন 9101008242 হেনলো।

ส่งอันสิเลโลอาดุงยังเอเลโลอาดุงยังเยรอยยีสุงอัน

lo dam yeng keng nang don klang yeng keng pin ti dam.

อีกลังเอจองสาเวดนี่อีกลังสีอิมปีมารัง

不比江山壮丽人阿潘，不能也阿加拉南西姆。

0: pen ki kom nai ta gontai CK pining la printing pen la design customer pen lan ke pining tam ya dhek tumang ke non mat nang lon de tha po potong don thek the de te la loi si pen ke la customer tums tam jung se emergency pustame sap o porridge pining la la ke si pen bang ke kasik sa bang ke mithang da che phir do porating pidun thek the de na la tai si mithang phanta ga che phir do lo he ne chichak don et pen ke customer dong wang po nang order te kang lok po monang ching thum po la so phi patang don thek the de na pul la so ka che matha da du do
1: langdam elo pulo te nang li ke printing he hoya sai ke claim ke penang ananing kan dolo la si nang li labang so sai ke claim pen ta isi kireng iwar sai do punang li pudam onji ma
0: do labang ke ni li pudam onji tamme chipaning ding ning langdam ette la printing hin mangke pene verye kalimate la program ko anma ki do ki bi lahe se langdam nang po la printing non langdam elo te season do la tum ta he de la September to March an ke la tuma season la la printing tum he de season la lo te el tum da carving long फांसी पुदम है सेप्टेम्बर पेन लोते लप टीचर डे लहाय असाय क्वांग पो टीचर डे पेन लपेन अदमासार डुमस्तमे लसवा सीजन से पुरन पो लपेन फेस्टिवल जोनल फेस्टिवल स्तमे द पोला दक पेन के लपो सीजन दम पो मो मार्सन लो कर्बियो फेस्टिवल से कि जिरलो बते सीजन तक जिरलो नने चीनी दा मतेंगते नन लानी क्लेमबम पेन एक्सपीरियंस दा मतेंगते हेदे लपेन ला पेंदेर लो पुलोंते हेदि सीजन बंग के आवेलो मंतुनी मंतुनी पेन चलो लसी आले के दो अविस तमिला नि चिक्लो योन प्ली अंगबोंग चलो ला चिक्लो योन प्ली योन फो है ला सोंग बोंग चलो ला पेंदेर लो पुलोंते कम सोम लो प्रिंटिंग आ हिन बंग के
1: तंगते नोन बंग के नोन ओवी की मिया तुमा फान नंग लिहिन पेन को पिने के थान का पचिनी गांग तुंग ला पुसन दोम
0: नोन चार्ली बॉम ला पेन नोन थेकदम लोंग वे किमी तुमस्तमे नोन बंके के पप्रांग दोन सोंस थेकदम लोंग नोन साई चोक्लेम तमे पिनंग अन ओवे किमी तुमे साई चोक्लेम बोम लो लाहे बिजनेस अ हिन बंग लो दुन बोम लो चोक्लेम दुन बोम लो सोन पी री की जोर पेन चिंग लो कपरे कपरे का साइज तमे क्लेम दुन बोम लो ला बंगेली किलांग दुन बेंतासा ओ निंग चारोंग दो ने पुदम एलो बते तुम नोन साई चोक्लेम बोम तुम्बांगे की दो ओ पेनले चुक्लेम का लिमते असावेट पेन से कि क्लेम के चेंग ला पेन इसी चुनिंग रीगंग तुम्बांग के निमिथांग पेन तमे दे इली कार्बी तो चपनिंग दिंग ओ उन ए ला के देर ने नेता निकानी सी ला पेन लो बते इरिबो बतिती सी थेक दुन लॉंग नॉन सोन है दे ला सी नॉन ओवे किमी तुम्हान तमे इसी चुनिंग रीगंग तुम के लाहन लो बिजनेस लॉन्ग बंग के है दे लंगदम एलो बते लॉन्ग ओ होता दो जी ला पेन लॉन्ग ले पिन होता दुई तमे ला के लॉन्ग ले पिन हो बंग के हेदि के माथा दम नपंग दाय हेकति लपेन ला सोसाई इरिबु ला संग माथा दो कोते आ कप्रेक्सी क्लेम थु रोंग पो पोला कप्रेक किंग कम से जोलो ते होला ओंग चुनचे ओंग पो थेला कि क्लेम तंग आ साई बंग से दि ओथिप नंग पो पसेने मिथंग के माथा दम नोन ने मिथंग ता ने आ कप्रेक आ साई बंग थेक थे दे अमासी ला अप्रांग बन द कंप्यूटर आ साई से क्लेम बम मसी कंप्यूटर हिन बंग से चिरेप दन थु चेक लो ला बंग से थे ने नोन मो होला सो ने डाउनफॉल हुड फन रिक्वायरी फन पहेदे लसो अबांग माथा दम थेक नंग पो लसे लसोन पेन से दी अप्रांग पबा दुन बम नंग पो लसे मेन मेन लोंग ओ हो जोंग से पाजुत कोक पेन अको पालोंग थुजी पहेदे सो कचितो रो वसन दुई ला चितो रो पेन कचिंग थो थी बोलते हला के दु ओ हो से हेदी क्लीनिंग नंग पो जोंग से दु बम पोलोंते अको कपरे कांग सुसे पोलासन दे अप्रांग लपो माथा पोन बम नंग पो से किसुंग फुलोक पेन जोंसे मेन मेन इरिबो ब्लो पते हे दे ला लो सिक सा खे पिनान थेक दुन लोंग लो ला तुम स्तमे इंटोन को का तुम दो ओलो कि चेंग अंको मि सेन पो अंग बोंग लोम इंटोन थु को तुम फान थेक दुन लोंग ओलो स्तमे ने माथा दाइम बंग के ला क्लेम कि चेंग हो जोंसे चेंग पमी लो प्लुंती

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल सी, विंध्याचल

0: के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लाके आकाशवाणी दिफु रेडियो नंगा जुदन का चिंहनारा न स्टूडियो घड़िया पर अनिका सम्पर फाइ थ्रोग्राम मिनिट थोंके प्लेन इचे डग डग लसे अदन थ्वांग डेंग दामिलो नांग लाके हिंदी लामार जान कालिया लुन आंग डेंग लबांग सोंग डेंग लोंग किचिंग से लुन अजिक था अलिसा चेनाई किलुन लबांग सो अलुन अलुन अलाम थे एक बार दो बार लबांग सो अलुन लाके मेड इन इंडिया पो एल्बम अलुन तो तंग त्याज सिनांग लबांग सो अलुन।

नाले तुम कर्जी लंग बम लगे हिंदी लमार जान का लियालुन अंग दे पुठत अलिसा चेनाई किलुन अलुन अर्जु ठीक था अलुन अलाम थे लैला लबांगसो लुन लगे ओम द इनर वॉइस लबांगसो एल्बम लॉन्ग अलुन ततंग तो त्यार्जु सेनांग लबांगसो अलुन।

लाके आकाशवाणी दिफु नाले तुम जाय मेकर जे लंगबम लाके एफ एम बेना लंग पेन मेगा हर्स फरो सिरा तो बार सिर केप न्यूज ऑन ए आई आर एप लापेंटे रेस एवं लंग पेन तानल तुम जाय मेक अर्जे लंग जी रेडियो नंकर जे दुन कचिंग होना रात नाले स्टूडियो घड़िया पर अनिका सां पर फाइट रॉक्सी प्लेंग टांग लो लासे नांगले तुम কার্বি দেলং রেচিং হনালুন মালাম সব পরা ফিরতে আজ উইক লং পাওয়া।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लाके आकाशवाणी दीपू आदम थुराम थुलो नंग इंग्लिश आलोन आंगे केचें से आलोन आर्जिक था हाना मोन्टाना किलुन आलोन आलोन आलम थे बीन हियर ऑल अलोंग लबांगसो लोन लाके हाना मोन्टाना एल्बम अलोंग आलोन आर्जिस नंग लबांगसो आलोन

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.

0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनाक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
6: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
7: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी

0: उससे सफल नहीं हो रही।
1: पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
2: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800 1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है।
2: राष्ट्रीय विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
5: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने